0: 还有点偏差，
1: 对对，有点偏差，
0: 但
1: 是拍的蛮不错
0: 的，好，那大家在影展中都很受到重视，
1: 没错没错没错。
0: 好，那我们再听一段音乐之后，我们再来谈谈啊最后的《锦上添花》，谢谢。
2: चली आ गई आगे उधर करो फिर चली गई यार आ गई चली गई।